Imagine all the people. Dost to John Lennon, 1971 का रिलीज्ड एल्बम. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके गाने के बारे में मुझे बात ही करना है. आपको मैंने विश भी नहीं किया, लेकिन नमस्कार, सत श्री अकाल, केमचो गन्नी खम्मा, अस्सलाम वालेकुम. हमारे सारे सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार रजनी की ओर से, फोई बी की तरफ से. जी हाँ दोस्तों, जॉन लेनन का जो एल्बम रिलीज हुआ था 1971 में, और दिस वाज द नेम ऑफ द सॉन्ग वाज इमेजिन, लेकिन इट हैज़ रीबॉर्न, इट हैज़ रीलिव्ड, इट हैज़ रीमेड विद द इंडियन क्लासिकल रागा. वाज़न्ट दैट ब्यूटिफुल. जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ प्रोग्राम में साथ देने के लिए 10 बजे तक. लेकिन दोस्तों, हम लोग का बाहर का तापमान इस वक्त 24 डिग्री सेल्सियस है. काफ़ी अच्छा मौसम है, और जो अगले कुछ महीने के लिए प्यार का मौसम होगा, कि यानी कि विंटर. तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्यार का मौसम हर रोज़ ही होता है, हर रोज़ होनी चाहिए. और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. जैसे कि आपने ये गाना सुना, इट वाज सो ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल लिरिक्स. और जॉन लेनन जो लिखा था, ही वाज एन इंग्लिश म्यूजिशियन, सब तो जानते हैं. ही वाज पार्ट ऑफ द बीटल्स ग्रुप. और ये जो मैसेज जॉन लेनन वांटेड टू गिव आउट टू द पीपल बाय राइटिंग द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग वाज To imagine a world of peace beginning with living without religion and its concepts, without economic materialism and without borders separating nations. Ji, kya baat hai, dosto. And it was a beautiful, beautiful redemption, mixture, fusion of our Indian classical remade. Wasn't that wonderful? Ji haan dosto, aapka bahut bahut swagat hai aaj ka program hamare saath dene ke liye. Lekin kahin jayega mat, kyunki bahut kuch baatein share karna chahti hu aapke saath. Aur aapke abhari bhi hain, kyunki aap hamare saath dete aaye hain itne saalon se. Aur isi waqt jo hamari radiothon jo chal raha hai, पिछले हफ्ते से शुरू किया है, अंटिल द 8th ऑफ मे हम लोग फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं. तो वी द फंड्स विल बी एबल टू कंटिन्यू हैविंग अस ऑन ए एंड फोर ई बी ऑन ए एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल द डिफरेंट 50 प्लस कम्युनिटीज इन क्वींसलैंड एंड शेयरिंग the world with all the communities around the world. Ji haan dosto, to aapki guzarish hai ke hamare group jo hai, jo aapko phone karenge just to get your contributions, and definitely ji haan dosto, jitne bhi ho sake, please hum ummeed karte hain ki aap contribute karenge aur hamare group, khas taur ke hamare group ko, जो बहुत छोटी सी ग्रुप है फोई बी रेडियो स्टेशन में, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे. 40 साल के ऊपर हम लोग हैं इस स्टेशन पे. वी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम फॉर ओवर 40 इयर्स एंड वी आर स्ट्रगलिंग, लेकिन फिर भी उम्मीद तो बहुत बहुत है हमारे जो आपके कंट्रीब्यूशंस के लिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे. दोस्तों, दैट रिडेंशन वॉज अ जॉन लेनन क्लासिक from 1971 remade into the Indian classical music. तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे जो अगले गाने जो हैं, मैं ये सारे गाने आशा भोसले के नाम पे समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे आप जानते हैं आशा भोसले just passed away, one of the biggest Indian singers, not only in India, lekin around the world. People around the world know her and love her. And Asha Bhosle Tai, jaise pure industry mein, Hindustani film industry mein, jo usko Asha Tai bulate the, Marathi mein, aur matlab elder sister, aur wo itne for 8 decades, yani ke 80 saal se wo Hindi industry mein kaam kiya hai, bahut bahut choti umar se. लेकिन शर्मिला टैगोर से, हेलन से, और आज तक के नए सितारों को उन्होंने आवाज़ दी है. लेकिन सच अ वर्सटाइल सिंगर. लेकिन आप इस वक्त इस गाने को सुनिए, दैट शी हैड गिवन हर लेंट हर वॉइस टू शर्मिला टैगोर
in a very, very beautiful song. सुनते रहिए, बने रहिए. 9:10 हो चुके हैं और मैं हूँ रजनी आपके साथ 98.1, sharing the world with you.

जी हाँ दोस्तों, ये था ये रात फिर ना आएगी फिल्म 1966। शर्मिला ठाकुर, बिस्वजीत और मुमताज़ ने किरदार किया था इस फिल्म में। काफ़ी अच्छी फिल्म थी और ये था आशा भोसले की आवाज़ में। लेकिन आशा ताई ने बहुत सारे डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक उन्होंने आवाज़ दी है और ये एक बहुत प्यारा गाना रफ़ी साहब के साथ।

जी हाँ दोस्तों, हम दोनों फिल्म 1961 कथा देवानंद और साधना, और फिल्म इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द नवकेतन ग्रुप ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज, और विजय आनंद साहब यानी कि देवानंद के बड़े भाई ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय देवानंद। बहुत बढ़िया फिल्म थी, गाना तो एक से बढ़कर एक था। और दोस्तों, आशा भोसले के साथ रफ़ी साहब, आशा भोसले ताई ने बहुत सारे सितारों के साथ और हमारे अपने जो गायक हैं इंडस्ट्रीज़ में 80 साल से उन्होंने काम किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा ओपी नायर के साथ जो म्यूज़िक डायरेक्टर था, और जयदेव इस फिल्म हम दोनों का म्यूज़िक डायरेक्टर था जयदेव, लेकिन ओपी नायर के साथ उसका बहुत लंबी लंबी रिश्ता था फिल्मी गानों और फिल्म इंडस्ट्री में। और उसके बाद फिर आशा भोसले ने आर डी बर्मन के साथ बहुत काम किया, और आर डी बर्मन ने बहुत सारे हिट फिल्में और हिट गाने प्रोड्यूस डायरेक्ट किया था। तो जी हाँ दोस्तों, हम आशा भोसले के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कुछ दिन पहले उसका देहांत हुआ था। लेकिन दोस्तों, हम लोग इस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते 25 अप्रैल हमारी एनजैक डे है, एनजैक परेड होगा, और मैं हर अपने जो फौज है, हमारे भारत के फौज जो है, मैं उनको सलाम देना चाहती हूँ एंड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर सो प्राउड ऑफ द वेटरन्स, इंडियन वेटरन ग्रुप कंटिजेंट जो ब्रिस्बेन में है, एंड एवरी सिंगल वेटरन जो हमारे एनजैक परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, एंड डेफिनेटली बहुत गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि इट विल बी अ फंटास्टिक डे। और हो सके तो आप लोग जाइए एंड चेयर आर वेटरन्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द एनजैक परेड। जी हाँ दोस्तों, एनजैक डे 25 अप्रैल, एंड भूलिएगा मत, डेफिनेटली गो एंड सपोर्ट आर वेटरन्स इन द परेड। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, और इस वक्त आशा ताई ने, जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे अलग किस्म के जॉनर म्यूज़िक की आवाज़ उन्होंने दी है, और उसमें से ये मेरा एक बहुत बड़ा फेवरेट एल्बम था जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ, और वो भी नहीं, ये बहुत बड़े गायक के साथ उन्होंने ये गाना बनाया था, अदनान सामी के साथ।

जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा ये गाना? अदनान सामी के साथ आशा भोसले ने गाना गाया था। ये बहुत प्यारा गज़ल था और जैसे मैं कह रही थी, उन शी इज़ सच अ वर्सटाइल सिंगर इतने सालों के लिए। एंड व्हेन शी पास्ड अवे शी वाज 92 इयर्स ओल्ड। लेकिन जी हाँ दोस्तों, क्या जिंदगी था, क्या लाइफ था, क्या शोहरत था। और आशा ताई के जैसे कोई नहीं होगा। उन्होंने कितने सारे इतने सारे सितारों को आवाज़ दी है और शी वॉज सच अ आइकॉनिक फिगर इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। लेकिन शी वॉज वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड एंड लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। और बहुत बहुत मैं जितना भी कहूँ कम हो जाएगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हर चैनल पे आशा ताई के नाम पे उनके गाने, उनके ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, रेडियो पे, टीवी पे और बहुत सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी। तो मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। और लेकिन दोस्तों, आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं कि व्हाट अ कलरफुल लाइफ शी हैज़ लेड, व्हाट अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स आशा ताई ने फेस किया था ज़िंदगी में, उनके पर्सनल लाइफ में और करियर में भी। क्योंकि उसकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जो थी आजू बाजू में, और दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री को टोटली रूल किए थे बहुत सालों के लिए। एंड शी वॉज इन द शेडो ऑफ लता मंगेशकर। उन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन भी हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी बहने तो बहने ही होते हैं और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन दोस्तों, हम लोग 9:23 हो चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक बहुत प्यारा गाना, और ये गाना आशा ताई ने, शी हैड लेंट हर वॉइस फॉर दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग टू हेलेन, हु डिड अ फैंटास्टिक नंबर इन द फिल्म डॉन।

0: ये संदेश ब्रेस्ट स्क्रीन क्वींसलैंड की ओर से है। स्तन जांच हर दो वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जाँच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 18250 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अट स्टेशन प्रायोजक।
1: जी हाँ दोस्तों, ये था फिल्म डॉन का और हेल ने बहुत बढ़िया किरदार किया था इस फिल्म में और ये गाना आशा भोसले की आवाज़ में थी। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रही थी कि आशा ताई की आवाज़ ने इतने सालों से इतने सारे सितारों को आवाज़ दी है और ये था फिल्म डॉन 1978 का फिल्म और संगीत ने दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और बढ़िया फिल्म थी, काफ़ी अच्छी स्टोरी भी थी और इसका रीमेक भी बनाया था शाहरुख खान के साथ, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है। और दोस्तों, हम लोग इस वक्त आगे बढ़ेंगे 9:00 कमिंग अप टू 9:40 AM इन ब्रिस्बेन लोकल टाइम और हम आपके साथ देंगे 10:00 तक। तो दोस्तों, मैं जो मैंने शुरुआत में गाना आपको सुनाई थी जो बाई जॉन लेनन इमेजिन, मैं एक बार और आपको सुनाना चाहती हूँ जिन्होंने इस वक्त ट्यून किए हैं हमारे प्रोग्राम को, ताकि आप लोग सुन सकेंगे और महसूस करेंगे कि इतना गहरा मतलब है इस गाने को, एस्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड, जो हमारी हर तरफ हर जगह पे हर देशों में क्या हो रहा है और देयर सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड द वर्ल्ड, इतना डर होता है, इतना डर रहता है सबके लिए, आने जाने के लिए क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। तो दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट आई कुड नॉट हेल्प बट शेयर इट विद यू एंड अलाउ मी टू शेयर दिस अगेन विद लिसनर्स हु हैव जस्ट ट्यून्ड इन टू आवर प्रोग्राम। जॉन लेनन्स क्लासिक इमेजिन, टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, religion and having peace around all of us.

जी हाँ, दिस इज अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल जॉन लेनन्स के लिरिक्स के साथ जो 1971 में रिलीज हुआ था, और इसकी आवाज़ गौर से सुनिए दोस्तों, माइल्स डॉसन।

जी हाँ, एक और छोटी सी बात है. द पर्सन हु शेयर्ड दिस सॉन्ग विद मी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स फ्रॉम पुणे इन इंडिया. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू वेनो. थैंक यू वेनो. कीप शेयरिंग.

जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस वक्त ट्यून किए हैं एंड हैव हर्ड दिस दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट वॉज इमेजिन रिटन बाय जॉन लेनन एंड संग वोकल्स वॉज बाय माइल्स डॉसन, इट इट इज़ रीबॉर्न इन टू अ इंडियन क्लासिकल ट्यून विद द कस्टोडियन ऑफ एंशियंट मेडिटेटिव साउंड. री इमेजिन रागा वेयर द मेडिटेटिव बांसुरी और रीडिजाइंड सरोद कनेक्ट्स पास्ट टू द प्रेजेंट. It is a world of taal where the rhythmic cycle functions like a cosmic clock. Devotional tunes like bhajans find new life in this modern expression. Beautiful rendition by Miles Dawson. Amazing. Lekin dosto, like I said, this is was sent to me by very close and dear friend Venu from Pune. Thank you, Venu, so much. Keep sharing the music that you come across and I can share it with the world. Have a good day. And dosto, jaane ka waqt ho raha hai. And lekin hum log agle hafte bhi isi waqt, isi samay, isi station par zarur aayenge, zarur mulaqat hogi aap sab ke saath. Lekin dosto, do not forget to contribute towards our little group that is here in the 4EB radio station, and we have been here for 40 plus years and would hope, बहुत उम्मीद रखते हैं कि हम लोग आगे भी रहेंगे आपके साथ, आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज इन एंड अराउंड ब्रिस्बेन वी टॉक टू, वी ब्रिंग टू यू, शेयर विद यू द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी हैव एंड आवर प्रोग्राम ब्रिंग्स टू ऑल ऑफ यू. और ये हफ्ते तो हमने आशा भोसले के नाम पर हमने समर्पित था इस हफ्ते का प्रोग्राम. और ये याद करते हैं कि अप्रैल के महीने में भी वी लॉस्ट टू वेरी ग्रेट इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के सितारे. वो है इरफान खान, हु पास्ड अवे ऑन द 30th ऑफ अप्रैल, और ऋषि कपूर पास्ड अवे ऑन द 15th ऑफ अप्रैल. लेकिन ये तो अलग हफ्तों में हम लोग इन लोगों के गाने आपको ज़रूर सुनाएंगे. लेकिन दोस्तों, और एक बात है कि नेक्स्ट वीकेंड 25th अप्रैल इज़ द एनजैक डे परेड, एंड अ ह्यूज सल्यूट टू ऑल आर इंडियन वेटरन्स हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एनजैक परेड. एंड ऑल्सो बहुत सलाम करते हैं आप सब लोगों को, और दुआ करते हैं कि हमेशा खैरियत से रहेंगे. दोस्तों, ख्याल रखिए अपना. और मैं इस गाने को अपने वेटरन्स के लिए समर्पित करना चाहती हूँ. सोनू निगम की आवाज़ में. Dedicating this song to all our Indian veterans who are participating in the Anzac March on 25th.

0: Jee haan, this song was dedicated to all our Indian veterans who are participating in the Anzac Parade next Saturday, 25th of April, which is a day to be remembered in history around the world, and every single person who has participated in this, the Anzac War. So, dosto, बहुत कम वक्त रह चुका है हमारे प्रोग्राम के लिए, जाने का वक्त भी हो रहा है, लेकिन एक बहुत गाना मैं आपको, बहुत प्यारी गाना जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वो आशा भोसले की आवाज़ में किशोर कुमार के साथ और किशोर कुमार के बेटे के साथ अमित कुमार।
1: गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए।

जी उम्मीद रखते हैं कि बहारे तो आएंगे ही, एंड वी होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन अलाइव अराउंड द वर्ल्ड, एंड लुक फॉरवर्ड टू सम पीस एंड लव.